इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। जने पढ़ू था दरूद सजन से पान दरूद बुधन था, यानी जब भी हम सरकार पे दरूद भेजते हैं वो हमारा दरूद समाज फरमाते हैं। ये हमारा अकीदा है। ऊंचा बोले सुभान अल्लाह। समाज फरमाते

वालों को पता चल जाए, उनको भी पता चल जाए इस पिंडाल में मौला अली के आशिक बैठे हैं। बावाज़े बुलंद, मैंने वापस सिंध जाना है, आपकी आवाज सिंध तक मेरे कानों में गूंजती रहे। बावाज़े बुलंद हैदर।

आशिक बैठे हैं तो अभी उतनी आवाज नहीं आई। महफिल वाला पता नहीं कहाँ बैठा है, मैं तो जानता था किधर है, सारे ही महफिल वाले। हाँ, ये जितने स्टेज पे बैठे हैं इनको इतनी आवाज सुनाए, इतनी आवाज आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी जितनी ये आशिक अब निकालेंगे। समाथर में बावाजे बुलंद, जितनी अल्लाह ने जान में ताकत दी है उतनी जान के साथ मौलाली के नारे का जवाब देना है। बावाजे बुलंद, हैदर वर का सकीन कोई देखी आए जग सारा सफर दबेड़ा पान।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज, GFM 90.4।

0: दरियाए सिम की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत व यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओ गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक। रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप। वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।
2: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
3: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
3: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
2: 0331252576।
3: जी हा, 2315525786।
2: GFM रेडियो नेटवर्क,
3: सिंध जो आवाज़।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत व यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

पंजाब सिंध जे एहतजाज ऐं एतराज खे रद्द कंदे तकरारी न्यू जलालपुर कैनाल में पाणी छोड़ करे छॾियो। रसूल हेडवर्क्स तां जहलम दरिया जो पाणी आज़माइशी बुनियादनि ते न्यू जलाल कैनाल में छोड़ कयो वियो। रसूल हेडवर्क्स तां लॻभॻि 1,350 क्यूसिक पाणी जो छोड़। इरसा तर्जुमान जो चवण आहे त पंजाब पंहिंजे हिसे जो पाणी न्यू जलालपुर कैनाल में छॾियो, असांखे को एतराज़ नाहे। इरसा 2014 में न्यू जलालपुर कैनाल लाइ NOC जारी करे चुकी हुई। 2014 में जलालपुर कैनाल जे सिंध मुखालफत कई हुई, ॿियनि सूबनि हिमायत कई हुई। सिंध तकरारी कैनाल खिलाफ़ CCI में बि आवाज़ उथारियो हो। सिंध हुकूमत जो मौक़िफ़ आहे त गॾियल मुफ़ादनि वारे काउंसिल अञा ताईं न्यू जलाल कैनाल जे मंज़ूरी न ॾिनी आहे। CCI जी मंज़ूरीअ खां सवाइ कैनाल खोलणु मुनासिब नाहे। सिंध ऐं बलोचिस्तान विच में पाणी विर्च वारा मामला गॾियल राब्ते सहकार ऐं मुआहिदनि मुताबिक़ हल करण ते इतफ़ाक़। सिंध जे आपाशी वारे वज़ीर जाम खान शोरो ऐं बलोचिस्तान जे आपाशी वारे वज़ीर सादिक उमराणी जो ऑनलाइन इजलास। जाम खान शोरो चयो आहे त आबी मुआहिदे तहत बलोचिस्तान खे हिसे जो पाणी मुकमिल ऐं वक़्त सर ॾिनो वञे। ॿिन्ही सूबनि जे आबादगारनि जे मुफ़ादनि जो तहफ़ुज़ यकीनी बणाइण ज़रूरी आहे। वफ़ाक़ी हुकूमत पेट्रोलियम क़ीमतनि में इज़ाफ़ो करे छॾियो। पेट्रोल 5.44 रुपया ऐं डीज़ल 31.05 रुपया फ़ी लीटर महांगो। क़ीमतनि में इज़ाफ़े बाद पेट्रोल 316.15 रुपया ऐं डीज़ल 354.35 रुपया फ़ी लीटर थी वियो। पेट्रोलियम डीज़ल अघनि में वाधि जो नोटिफिकेशन जारी करे छॾियो।

0: अली परवेज मलिक चयाते जो फैसलो कयो ते डीजल 110 डॉलर मां वधी थी वियो आहे। 130 अरब जा वसीला इस्तेमाल कंदे माण्हुनि खे सहारो ॾियण जी कोशिश कई। पेट्रोल आलमी सतह ते सस्तो थियण ते अवाम खे 70 खां 80 रुपियनि जो रिलीफ ॾिनो वियो। अवाम ते कंहिं बि क़िस्म जो वाधू बार नाहे विधो वियो। अता तारण चयो त खिते में छिकताण सबबि पेट्रोलियम शयुनि जे अघनि में वाध थी रही आहे। मुख़्तलिफ़ मुल्कनि मां कार्गो घुराए तवानाई ज़रूरतनि खे पूरो कयो वियो।
1: शहबाज शरीफ साहब को बजाबता खुद क्लैरिफाई करना चाहिए कि क्या ये वफाकी हुकूमत का पॉलिसी है, बाकायदा वफाकी कैबिनेट का ये पॉलिसी है जो आपका वजीर दफा कह रहा है या नहीं। अगर आपका पॉलिसी है तो रखें उसको, अगर आपका पॉलिसी नहीं है तो लात मार के बाहर निकालो। ये दूसरा एक वफाकी वजीर साहब है, ये कहता है कि 12 सीटें हमारे जेब में ना, जिसका जहनियत यही होगा वो तो उनको कोई फिक्र नहीं है। एहतजाज करने वाले बुरा भला होंगे, गलत भी होंगे, लेकिन हुकूमत भी सिर्फ वो सजा एहतजाज करने वालों को नहीं दे रहे, तमाम कश्मीरियों को दे रहे हैं और 30 दिन तक दे रहे हैं। अगर हमारे कश्मीर के माएं बहनें आंसू रो रहे हैं तो हमारे आंखों से खून के आंसू निकलते हैं।
0: एक वफाकी वजीर चवे तो 12 सीटों संदन खीसे में आहिन, जंहिंजी ज़हनियत अहिड़ी हूंदी त उनखे कश्मीर जी भी का परवाह न हूंदी। नून लीग अडियाला मेरोर कोटली ऐं रावला कोट खे कश्मीर जो हिसो ई नथी मञे। वज़ीर आज़म वाज़ा करे छॾियो त बचाव वारो वज़ीर जेको चई रहियो आहे या संदसि पॉलिसी आहे या न। बचाव वारे वज़ीर जो बयान वज़ीर आज़म जी पॉलिसी न आहे त खेसि ॿाहिरि कढे। पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो आज़ाद कश्मीर जे इलाइक़े अडियाल में चूंड जलसे खे ख़िताब। बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो त कंहिं हिक जी ग़लती जी सज़ा ॿिए खे न मिलणु घुर्जे। एहतजाज कंदड़ ग़लती ग़लति हूंदा आहिनि पर सज़ा पूरे कश्मीर खे मिली रही आहे। एहतजाज कंदड़नि ऐं हुकूमत खां मुतालबो आहे त आम कश्मीरियुनि खे तकलीफ़ न ॾियो। तजवीज़ ॾिनी आहे त ट्रुथ एंड रीकंसिलेशन कमीशन जोड़ी वञे, पर हिन वक़्त ताईं न एहतजाज कंदड़नि ऐं न वरी हुकूमत जो जवाबु आयो आहे। दरख़्वास्त आहे त कमीशन जो कमु मुकमिल थियण ताईं एहतजाज ऐं कार्रवायूं रोकियूं वञनि। रियासत पाकिस्तान हरमुज़ लंग खोलराए सघे थी त मुंहिंजो कश्मीर बंदि आहे, इहो बि खोलराए।
2: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले।
3: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
4: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
5: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
4: सुनते रहो GAFM 90.4।
6: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
7: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
6: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
7: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
6: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
7: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
6: 0331252576।
7: जी हा, 2315525786।
6: GAFM रेडियो नेटवर्क,
7: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
2: सुनते रहो GFM 90.4।
3: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
4: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
4: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
3: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 0331252576।
4: जी हा, 2315525786।
3: GAFM रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GAFM 90.4।

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم. सुहारी सिंध जे मलूक मिटीअ ते रहंदड़ तमाम मौज़िस ॿुधंदड़नि खे लाखीणे लतीफ़ जी ॿोली, मेहराण जी छोली ऐं मिठड़ी अमड़ जे लोली जहिड़ा सुहिणा सलाम ऐं यूनिस बकारीअ जा कुर्ब क़बूल पवन. दोस्तो, अव्हां जा कहिड़ा हाल आहिनि? ख़ुशबाश आहियो, ठीक ठाक आहियो, चाक चङा भला ऐं मतारा जोड़. असांजी दुआ आहे त सदाई तारनि में चंडू हुजो, खीर में खंडू हुजो, मेवनि में अंबु हुजो ऐं कॾहिं बि अव्हां जी मुर्क मेरी न थिए. सदाई अव्हां जे लुड़कनि जो ॾुकार ऐं मुर्कनि जो सुकार हुजे. शाल अव्हां खे कोसो वान लॻे, शाल अव्हां ॾुखियो ॾींहुं न ॾिसो. जुग जुग जीओ, मुर्कंदा महकंदा ऐं गुलनि जीअं टिड़ंदा रहो. सामाइन, ही आहे GAFM 88 रेडियो नेटवर्क जो GAFM 90.4 मातली. अवां टेस्ट ट्रांसमिशन ॿुधी रहिया आहियो. असांजो आवाज़ अवां ताईं जेकॾहिं पहुची रहियो आहे त ॿुधाए सघो था तव्हां GAFM 88 रेडियो नेटवर्क जे GAFM मातली बदीन खे किथे किथे ॿुधो पिया.

जी जनाब अगर अवजो यूनुस बकारी मौजूद है यकीनन अवा बुध पे जीए एफ एम 90.4 मातली जो आवाज जिंदगी मुहिंजी ठहे जे तू अची लोक वाधाई उडे जे तू अची दिल भरे करया मा दीदार तुझो प्यास नेणन जी लहे जे तू अची जीए एफ एम 88 रेडियो नेटवर्क जो हाजिर है जीए एफ एम 90.4 मातली जी एफ एम मातली जो ही आवाज अवां ताईं पहुचे पियो ऐं फ्रीक्वेंसी तव्हां ज्वाइन करे चुका आहियो 90.4 90.4 जी मज़े सामाइन जी एफ एम 88 रेडियो नेटवर्क जो अवां ॿुधो पिया जी एफ एम 90.4 मातली भदीन आते हुए खुश आमदीद जाते हुए खुदा हाफिज दो अल्फाज ही काफी हैं अगर कोई प्यार से कहे आप सुन रहे हैं जी एफ एम 90.4 मातली भदीन

GFM88 ರೇಡಿಯೋ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಜೊ GFM 90.4 ಮಾತ್ಲಿ ಬದ್ದೀನ್ ಅವನಿ ಪಂಜೋ ರೇಡಿಯೋ ಅವ ಸಣ್ಣ ಮುಖಾತಿಬ್ छा असो आवाज अवा तक पहुंची पो जै हाँ तक बुधाई सो किथे किथे बुधी रहे अवं जिते जिते भी बुध पे अवजो तमाम घणी मेहरबानी अवजो थोड़ो थर की वारी का वो किरोड़े कुर्ब तवा पैंजे ही रेडियो चैनल के ज्वाइन कर चुका है GAFM 90.4 मातली बदीन जो आवाज़।

0: मातली के हो तो
1: आप सुन रहे हैं GFM 88 रेडियो नेटवर्क
2: FM 90.4।
1: ये है GFM 90.4 मातली। जी जनाब, यकीनन आप तक पहुंच रही है आपके अपने रेडियो की वॉइस।

GFM 88 रेडियो नेटवर्क जो ही आहे GFM 90.4 माथली। GFM 90.4 मातली अवांजी ख़िदमत में मौसीकी प्यार पंहिंजाइप जा रंग खूबसूरत गीत ऐं गीतनि जी गुंजार खणी अवांजी ख़िदमत में हाज़िर आहे। सो जेकॾहिं अवां असांजो आवाज़ कनायो पिया त अवां ॿुधाए सघो था तव्हां असांखे किथे किथे कहिड़नि कहिड़नि इलाइक़नि वाहिणनि वस्तियुनि ऐं बस्तियुनि में कनायो पिया ऐं जेकॾहिं अव्हांखे अव्हांजो आवाज़ सुठो लॻे पियो त असांखे फीडबैक ज़रूरु ॾिजो ऐं यकीन अव्हांजे पसंदि जा जेके शोज़ हूंदा उहे अव्हां ताईं पहुचंदा रहंदा। जी हा, अवांजो पंहिंजो रेडियो, अवांजो पंहिंजो FM 90.4 मातली, अवांजे पंहिंजे रेडियो जो आवाज़ अवां ताईं पहुचे पियो ऐं अवां पंहिंजे रेडियो खे यकीननि मानाइती मोट ॾींदा आहियो।

રેડિયો નેટવર્ક જો GFM 90.4 માથલી જો આવાજ અહીં આવા બધી રહ્યા આવ્યો યુનિસ બકારી કે યકીન આવા સાણ કુરબજી કચેરી જારી ઓસારી किथे था चऊं पिया ओ साईं अवां खे त तारा तरीए ते रखी दियो असां खे किथे था चऊं पिया ओ साईं अवां खे त तारा तरीए ते रखी दियो असां खे रुगो इहो ई था गुरु अवां खां तव्हीं जीओ ऐं जीअण ॾियो असां खे जी हां अवां जे पंहिंजो रेडियो अवां जे पंहिंजो आवाज़ ऐं अवां जे पंहिंजे आवाज़ ताईं अवां जी पहुच ऐं असांजो अवां ताईं पहुचण यकीन हिकिड़ो ज़बरदस्त साइन आहे ऐं ज़बरदस्त साइन में असां अवां पाण गॾु हूंदासीं ऐं असां यकीन विख विख ते अवां जो साथ निभाईंदा आहियूं यकीन अवां जो साथ हूंदो आहे असां साण जारी

ही आहे GAFM 88 रेडियो नेटवर्क आहे मां ॿुधो पिया GAFM 88 रेडियो नेटवर्क जो GAFM मातली 90.4 GFM 90.4 मातली जे स्टूडियोज़ मां अवां लाइव नशरियात ॿुधो पिया जी हा अवां जो पंहिंजो रेडियो अवाम जो आवाज़ सिंध जो आवाज़ सो सिंध जो ई आवाज़ अवां ताईं पहुचे पियो ऐं जेकॾहिं अवां ॿुधो पिया पंहिंजे रेडियो खे त तव्हां असांखे ॿुधाए सघो था किथे किथे ताईं असांजो आवाज़ कनायो पियो वञे ऐं हा तव्हां असांखे मैसेज करे सघो था लिखंदा MTI स्पेस पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो पंहिंजो नालो ऐं 888-188-81 ते मैसेज ॾियारे मोकिलियो मुद्दत से आरज़ू थी उनसे मिलने की वो मंजिल पे मिले तो यूं मिले मैं नज़र उठा के तड़प गया वो नज़र झुका के चले गए ओके जनाब तो आप सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो GFM 88 रेडियो नेटवर्क का GFM 90.4 मातली ओके जी आपके साथ बातें होंगी जारी और सारी आपके साथ रहेगा आपका मेजबान आपका आरजे आपका अपना यूनिस बकारी

0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।
2: वेलकम बैक मजी समय नमाबुदोबिया GFM 88 रेडियो नेटवर्क GFM 88 रेडियो नेटवर्क के GFM 90.4 मातली बदीन जे स्टूडियोस में अवां बुधी रहे आयो पेंजी दिल चो गालियो। दुखियासी दुखियासी कोन आयो, लुछियासी पुछियासी कोन आयो, उम्मीद हुयूं जैमें वडियूं, जलियासी मुआसी कोन आयो, फकत उन जे खुशी खातिर सभी पंजा छड़ियासी छिन्नासी कोन आयो। जी जनाब अवानी खिदमत में अवानी पंजो यूनुस बकारी, यकीनन दिल जी गाल जारी हो

ही आहे अमाजो पेंजो रेडियो GFM 88 रेडियो नेटवर्क। हिन वक्त तव्हां ॿुधी रहिया आहियो GFM 90.4 माथली बद्दीन। लफ़्ज़नि जी खु़शबू, प्यार ऐं पंहिंजाइप जा अहसासु,

किन जे मोह में मिसरी किन जो वात गुलाब से माण्हू लाजवाब लुत्फ जन जे लफ़्ज़न में जी एफ एम 90.4 मातली।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज़,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।
3: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
4: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल
4: आई हां गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो विंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
3: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार लाइन लाए
4: असान जे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा
3: 0331252586
4: जी हां बुढ़ी 331 25 25 786
3: GFM रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज।

ही आहे GAFM 88 रेडियो नेटवर्क जो GAFM माथली बदीन अमा ज्वाइन कर चुका है असन जी फ्रीक्वेंसी है GAFM 90.4 माथली।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

GAFM 88 रेडियो नेटवर्क जो GAFM 90.4 मातली अमा बधी रहा है यो सिंध जो आवाज GAFM 90.4 मातली बदीन

प्रोग्राम में ज्वाइन होना चाहते हैं, फैमिली प्रोग्राम होना चाहते हैं तो क्या करेंगे जी? अपना सेल फोन उठाइए, कॉल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK, सिंगल स्पेस देंगे, अपना नाम लिखेंगे, पूरा मैसेज लिखेंगे और उसे सेंड कर देंगे 8881 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनना चाहते हैं तो जी लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है, बिल्कुल ही जब आप सर्च करेंगे तो आपको आराम से हमारा पेज मिल जाता है। पेज पर आइए, वहां पर आपको हमारे प्रोग्राम व्हाइट एशियन डेज स्किन ब्यूटी शो की लाइव पोस्ट मिल जाती है, जिसे आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे। तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करते रहिए।

अगर आप हमारे साथ मौजूद है तो आप लोग अपने आसपास जितने भी लोग हमारे साथ हैं यानी कि उनको भी ये बताएं कि भाईजान आपके एक करीबी जनरल स्टोर व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो चुके हैं, तो अगर आप भी परचेज करना चाहते हैं तो बिल्कुल परचेज कीजिए, क्योंकि मुझे ये लगता है कि अब आप

0: 9595 ही नंबर है जिसको तुम डायल करें पांच ही करीबी जनरल स्टोर से वाइटेश ब्यूटी प्रोडक्ट्स सुजन यावरी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स सुजन उन्होंने तमा अवेलेबल कराए सगो ते हाय मासूमा ये पोएट्री है ये लास्ट में नहीं कि तुझे आंखों से देखूं तेरी याद का आना तेरी दीदार से कम भी नहीं क्या बात है और ये हमारे साथ मौजूद है मीरपुर खास से रुखसार मरी हैं जी कहती हैं अस्सलाम वालेकुम सदरा क्या हाल है आपके आपका शो सुन रहे हैं बहुत अच्छा है थैंक यू सो मच आपको खुश आमदीद कहती मुझे ओएसटी सुनाइएगा आई विल ट्राई और उसके अलावा हैं जी हमारे साथ यहाँ पर कौन अब्दुल गफूर केसर हमारे साथ हैं जी वालेकुम अस्सलाम आपको भी वेलकम इन खुश आमदीद कहा जाता है इमरान अली अब्बासी कहती हैं अस्सलाम वालेकुम आप कैसी हैं बाजी आ गए आपके साथ ही हम 3 बजे तक क्या बात है भाई को खुशामदीद कहा जाता है अलार खान हमारे साथ कहते हैं सलाम क्या हाल है मैं कोटली से आपका शो सुन रहा हूँ मैं फर्स्ट टाइम शामिल हुआ हूँ कोई वेलकम करेगा बिल्कुल जी आपको वेलकम किया जा रहा है सलार खान आपको खुशामदीद कहते हैं जी हम इस सारे खूबसूरत से प्रोग्राम है वासा भाई हमारे साथ मौजूद है वासा भाई वालेकुम अस्सलाम कैसे हैं ठीक ठाक है और इमरान भाई कहते हैं हमने पहले ही डाउनलोड किया है अच्छा
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटमिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
3: सुनते रहो GFM 90.4।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज। GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर।
1: अमेरिका जे जदीद रेडार सिस्टम के तबाह कयो वयो। शाम में भी अमेरिका जो कमांड सेंटर तबाह कयो आहे, जंहिंजे नतीजे में केतरा ही अमेरिकी फौजी भी मारजी विया आहिनि। कुवैत ईरानी हमले में बिजली निज़ाम मुतासिर थियण जी तस्दीक करे छॾी। $12 अरब जा ज़ब्त थियल असासन जारी करण वारे मुआहिदे खे हतमी शकल डि॒नी वई आहे। आबना हरमुज़ में जहाज़नि जी अचवञ जे राब्ते जो निज़ाम क़ाइम करण ते इतफ़ाक़ कयो वियो। ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालेबाफ जे स्पीकर जो बयान। बाकर कालेबाफ चयो त आबना हरमुज़ जो इंतज़ाम ईरानी क़यादत ई तय कंदी। ईरान यूरेनियम ॿाहिरि उमारण बदिरां रचाव जी सतह घटाए। न्यूक्लियर फाइल ज़ब्त थियल असासन ऐं लबनान ते टे टेक्निकल वर्किंग ग्रुप्स कम कंदा। नायब वज़ीर आज़म एसाक डार जो अरब मीडिया खे इंटरव्यू। एसाक डार चयो त अमेरिका अॻु में मुतालबो कयो हो त ईरान जो रचाव थियल यूरेनियम ॿाहिरि मुंतकिल कयो वञे। आबना हरमुज़ मां जहाज 60 ॾींहं ताईं ट्रेफ ॾियण खां सवाइ गुज़री सघनि था। स्टैंडर्ड नेविगेशन जा सर्विस फीस ॾियणी हूंदी। ट्रम्प ॻाल्हियुनि दौरान ज़ाती तौर रहनुमाई कई। सऊदी अरब, कतर, मिसर ऐं गडि॒यल अरब इमारात टहिकाड़ीअ खे सपोर्ट करे रहिया आहिनि। ॻाल्हियुनि जो ईंदड़ मरहलो सख़्त थी सघे थो। डील में को बि नाकारी नुक़्तो शामिल नाहे। गडि॒यल क़ौमुनि जे ईरान ऐं विच ओभर में शहरी हंधनि ते हमलनि जी मज़म्मत। एंथोनी गोतरेस सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर खे निशानो बणाइण ते गणतीअ जो इज़हार कंदे चयो आहे त अहिड़ा हमला क़बूल करण जोगा न आहिनि। तेल जा अघ रोज़ मामूल जो फ़ैसिलो त थी वियो। छा

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: रखे हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

अमेरिका जा ईरान ते 17 ॾींहं बि मिज़ाइल हमला, पुलनि ऐं बिजली घरनि खे निशानो बणायो। अमेरिकी हमलनि जे नतीजे में 8 शहरी शहीद, 20 ज़ख़्मी। ईरानी पोर्ट बंदर अब्बास ॾांहुं ईंदड़ वेंदड़ रस्तनि, रेलवे ट्रेक्स ऐं पुलनि खे तबाह कयो वियो। बोशेर, लोरिस्तान ऐं ॿियनि शहरनि जे बिजली घरनि, पुलनि, नेवल ऐं फ़ौजी अॾनि ते बि हमला। अमेरिकी हमलनि में गुलिस्तान सूबे में ईरान ऐं रूस खे रेल ज़रिए ॻंढींदड़ पुल बि तबाह थी वई। अमेरिकी सेनेट खां मौजूदु ईरान जे दिफ़ाई ऐं नेवल निज़ाम खे निशानो बणायो वियो आहे। अमेरिकी हमलनि जे जवाब में ईरान जा ओमान, बहरीन, कुवैत, शाम, कतर ऐं इराक में जवाबी वार। अमेरिकी फ़ौजी अॾनि ऐं दिफ़ाई निज़ाम खे निशानो बणाइण जी दावा। पासदारनि इनकलाब मूजिबि उर्दन में हमलनि जे नतीजे में अमेरिकी वेढ़ाक जहाज तबाह थिया आहिनि। ओमान में अमेरिका जे जदीद रेडार सिस्टम खे तबाह कयो वियो। शाम में बि अमेरिका जो कमांड सेंटर तबाह कयो आहे, जंहिं जे नतीजे में केतिरा ई अमेरिकी फ़ौजी बि मारिजी विया आहिनि। कुवैत ईरानी हमले में बिजली निज़ाम मुतासिर थियण जी तसदीक करे छॾी। $12 अरब जा ज़ब्त थियल असासन जारी करण वारे मुआहिदे खे हतमी शकल ॾिनी वई आहे। आबना हरमुज़ में जहाज़नि जी अचवञ जे राब्ते जो निज़ाम क़ाइम करण ते इतफ़ाक़ कयो वियो। ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालेबाफ़ जे स्पीकर जो बयान। बाकिर कालेबाफ़ चयो त आबना हरमुज़ जो इंतज़ाम ईरानी क़यादत ई तय कंदी। ईरान यूरेनियम ॿाहिरि उमाण बदिरां रचाव जी सतह घटाए। न्यूक्लियर फाइल ज़ब्त थियल असासन ऐं लबनान ते टे टेक्निकल वर्किंग ग्रुप्स कम कंदा। नायब वज़ीर आज़म एसाक डार जो अरब मीडिया खे इंटरव्यू। एसाक डार चयो त अमेरिका अॻु में ई मुतालबो कयो हो त ईरान जो रचाव थियल यूरेनियम ॿाहिरि मुंतकिल कयो वञे। आबना हरमुज़ मां जहाज़ 60 ॾींहनि ताईं ट्रेफ ॾियण खां सवाइ गुज़री सघे।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GAFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
2: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GAFM 90.4।
2: हाय हाय हाय।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

अमेरिका जा ईरान जे शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर ते वधीक हमला ॾखण ऐं विच ईरान वारनि इलाइक़नि में पुलनि बिजली घरनि सुरंगनि ऐं सामूंडी पाणी बिठो कंदड़ प्लांट्स खे निशानो बणायो वियो हमलनि में शहीद थियल चइनि औरतुनि समेत अठ ॼणनि जूं तस्वीरूं बि जारी केतिरा ई ज़ख़्मी ईरानी मीडिया मूजिब अमरीका मेरी टाइम कंट्रोल टावर खे निशानो बणायो जासिक बेट के ते हज़ारे शहरियुनि खे पाणीअ जी फरहमी मुअतल थी वई ईरानी पोर्ट बंदर अब्बास ॾांहुं ईंदड़ वेंदड़ रस्तनि ऐं रेलवे ट्रेक्स खे बि तबाह कयो वियो अमरीकी हमलनि में गुलिस्तान सूबे में ईरान ऐं रूस खे रेल ज़रिए ॻंढींदड़ पुल बि तबाह थी वई अमरीकी चंडका मूजिब ईरान जे दिफ़ाई ऐं नेवल निज़ाम खे निशानो बणायो वियो आहे ईरानी फ़ौज जा कुवैत उर्दन बहरैन ऐं सऊदी अरब में अमरीकी फ़ौजी अॾनि ते जवाबी वार फासर इनकलाब चयो आहे त उर्दन में अल ज़रक एयरबेस ते हमिलो करे ॿ फायर जेट्स ऐं टे अमरीकी जंगी जहाज़ तबाह कया आहिनि हमले में केतिरा ई अमरीकी फ़ौजी बि ज़ख़्मी थिया बहरैन में अमरीकी ड्रोन जी टिपू खे बैलिस्टिक मिसाइलनि ऐं ड्रोन सां निशानो बणायो वियो बहरैन जे शेख ईसा एयरबेस ते अमरीकी जंगी जहाज़नि वारे हंध ते बि हमिलो कयो कुवैत में अल अहमदी बंदरगाह ऐं सऊदी अरब जे शहर अल खरज में प्रिंस सुल्तान एयरबेस खे मिसाइलनि सां निशानो बणाए अमरीका खे वॾो नुक़सान पहुचायो वियो आहे कुवैत बिजली ऐं डीसेलिनेशन प्लांट समेत अहम हंधनि ते ईरानी हमलनि जी तस्दीक करे छॾी

हाण जंग सां गॾु गालियुनि वारी पॉलिसी ख़तम थी वई। ईरान अमरीकी हमला जारी रहण जी सूरत में तकरार खे इलाकाई जंग में तब्दील करण जी धमकी ॾेई छॾी। ईरान जे सीनियर फौजी मुशीर मोहसिन रज़ाई चयो आहे त ईरान जी क़ुव्वत अमली जवाबी कार्रवाई ते ॿधल आहे। दुश्मन मिज़ाइल फायर कन्दो आहे त तेहरान जो जवाब हुन खां वधीक ताक़तवर हूंदो आहे। ईरान जो बुनियादी मक़सदु दुश्मन खे सबक़ सेखारण ऐं जंग जो ख़ात्मो आहे। गॾियल क़ौमनि में ईरान जे नुमाइंदे पारां ईरान जे इंफ्रास्ट्रक्चर ते हमला बंदि करण जो मुतालबो। ईरानी परडेही वज़ीर अब्बास राक्षी चयो आहे त आख़िरी साह ताईं वतन जो दिफ़ा कयो वेंदो। अमरीकी हमलनि में शहीद थियल ईरानियुनि जो खून ज़ाया थियण न ॾींदासीं।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: सिंध के माथे का झूमर
2: GAFM 88 नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।
4: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
5: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
4: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
5: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
4: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
4: 03125252786।
5: जी हा, 2315525786।
4: GAFM रेडियो नेटवर्क,
5: सिंध जो आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

पहर, जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हाँ जंग सां गॾु गालियुनि वारी पॉलिसी ख़त्म थी वई। ईरान अमरीकी हमला जारी रहण जी सूरत में तकरार खे इलाक़ाई जंग में तब्दील करण जी धमकी ॾेई छॾी। ईरान जे सीनियर फौजी मुशीर मोहसिन रज़ाई चयो आहे त ईरान जे हुकूमत अमली जवाबी कार्रवाई ते ॿधल आहे। दुश्मन मिसाइल फायर कंदो आहे त तेहरान जो जवाब उन खां वधीक ताक़तवर हूंदो आहे। ईरान जो बुनियादी मक़सदु दुश्मन खे सबक सेखारण ऐं जंग जो ख़ात्मो आहे। गॾियल क़ौमनि में ईरान जे नुमाइंदे पारां ईरान
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: छा पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो?
4: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
4: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
3: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 0331252576।
4: जी हा, 2315525786।
3: GAFM रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज़।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहां वहां। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GAFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

पाकिस्तान भारतीय जहाजनि लाइ फज़ाई हदनि ते लॻायल पाबंदी में वाधि करे छॾी। भारतीय एयरलाइंस ऑपरेटर्स भारतीय मिल्कियत या लीज ते ॾिनल जहाज़नि तोड़ी फ़ौजी जहाज़नि लाइ फज़ाई हदूं इस्तेमाल करण ते पाबंदी हूंदी। पाबंदी में 24 अगस्त 2026 ताईं वाधि कई वई। सिंध जे क़ौम परस्तन पंजाब जे न्यू जलालपुर केनाल खे सिंध जे पाणी ते धाड़े जो मनसूबो करार ॾेई छॾियो। तकरारी केनाल फौरी तौर बंदि करण जो मुतालबो क़ौमी अवामी तहरीक जे सरबराह अयाज़ अतीफ़ परी जो चयो आहे त पंजाब ज़बरदस्ती सिंध जे हिसे जो पाणी चोरी करे रहियो आहे। सिंधु ते को बि नओं केनाल या डैम क़बूल न आहे। ग़ैर क़ानूनी जलालपुर केनाल रिथा खे हमेशह लाइ दफ़न कयो वञे। जेस्कम चेयरमैन सनान कुरेशी चयो आहे त न्यू जलालपुर केनाल ग़ैर क़ानूनी मनसूबो आहे। ज़बरदस्ती केनालनि ज़रिए पाणी खयो वञे थो। सिंधु ते को बि केनाल क़बूल न आहे। दरिया बचाइण लाइ सिंध जा माण्हू तारीख़ी जुदोजहद करण लाइ तयार आहिनि। सिंध जे पाणीअ ते धाड़ो हणणु बंदि कयो वञे।

0: कुझु ई मिंटनि चंद मिंटनि जे फ़ासले ते मां घर पहुचण वारी हुयसि त ॿ मोटर बाइक्स ते चार ॼणा हुया, अननोन पर्सन्स हुया, चारनि वटि पिस्टल्स हुया ऐं गन पॉइंट ते हुननि मूंखां स्नैचिंग कई। छा असां डॉक्टर्स एतिरा अनसेफ आहियूं जो पंहिंजे शहर खैपुर जे अंदरि पंहिंजे प्रोफेशन खे नेस नथा करे सघूं? छा असां पढ़ी लिखी करे हिन शहर में इंजे लाइ आया आहियूं त असां सां कुझु बि कंहिं महिल बि कोई बि वारदात थी सघे थी? जस्टिस खपे, एसपी खैपुर इमीडिएट एक्शन खणे।
1: त अॼु असां घरां निकिरण सां ख़ौफ़ज़ुदा आहियूं, असां घरां नथा निकिरी सघूं इन उमेद में त असांखे कुझु थी न वञे। असांजा माउ पीउ बार बार बार बार इन ई फिक्र में हूंदा आहिनि त अलाए असां पंहिंजे जॉब ते पहुतासीं या न पहुतासीं। असांखे इंसाफ़ खपे।
2: खैरपुर खे कंदकोट कश्मीर थो बणायो वञे, पर मां सम्झां थो इन सारे अमल में जेके ख़ामोश धुरियूं आहिनि उहे शामिल आहिनि। एसपी साहब हुन वक़्त ताईं
3: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

0: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
1: त पोइ जीए एफ एम 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो एफ एम रेडियो आहे
0: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
1: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीए एफ एम मातली बदीन।
0: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
0: 0331252576।
1: जी हा, 2315525786।
0: जीए एफ एम रेडियो नेटवर्क,
1: सिंध जो आवाज़।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

पहर, जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: Thanks for watching this video. For more updates, subscribe Shehla Gul Official.
1: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GAFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।